0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज की मिशनरी धर्म बहनों पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के इस आदेश का पालन कलीसिया के आरंभ से ही किया जा रहा है, सबसे पहले प्रेरितों के द्वारा, फिर यूरोपीय देशों के मिशनरियों के द्वारा, और आज भी यह कार्य जारी है। सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो याद करती हैं, एक समय था जब यूरोप के मिशनरियों ने सुसमाचार की ज्योति जलाने के लिए समुद्र पार किया। उनकी उपस्थिति ने समुदायों और संस्कृतियों को नया रूप दिया। आज इतिहास ने एक नरम लेकिन प्रभावशाली पन्ना पलट दिया है। जैसे जैसे पश्चिम के कुछ हिस्सों में बुलाहट कम हो रही है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मौजूद देशों से कलीसिया उन जगहों पर फिर से सुसमाचार पहुंचाने के लिए मिशनरियों को भेज रही है जहां से कभी उन्हें सुसमाचार भेजा गया था। धर्म बहनें उन जगहों पर चुपचाप कलीसिया को नवीकृत कर रही हैं जहां से विश्वास उनके तटों पर सबसे पहले पहुंचा था। यह मिशन का पूरा चक्र है। यह एक जीता जागता संकेत है कि कलीसिया एक शरीर के रूप में आत्मा द्वारा लगातार नवीकृत होती रहती है। सिस्टर जूली इयाया सीएसएफ बेरगमो के पौत्र परिवार धमसंघ के सदस्य हैं, जो शिक्षा एवं निष्ठापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से कलीसिया को बनाए रखने वाली कई धर्म बहनों में से एक हैं। कोंगो में जन्मे सिस्टर जूली की यात्रा एक साधारण लेकिन मजबूत हाथ से शुरू हुई। 2012 में उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और धर्म संघी जीवन अपनाते हुए ईश्वर के बुलावे के प्रत्युत्तर में अनजान जगह की यात्रा पर निकले। उसके बाद जो कुछ हुआ वह प्रशिक्षण की अवधि थी, जो पहले उसकी अपनी संस्कृति पर आधारित थी और बाद में सीमाओं से परे विस्तारित हुई। उनकी बुलाहट परिपक्व हो गई क्योंकि उसने मिशनरी जीवन को खुले दिल से अपनाया और जहां भी जरूरत थी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का व्रत लेकर सिस्टर जूली ने न केवल आराम त्याग दिया बल्कि हर दिन अपना भविष्य पूरी तरह से ईश्वर के मार्गदर्शन को सौंप दिया। सिस्टर जूली के मिशन के केंद्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। वह अपने साथ दो दुनियाओं, अफ्रीका और यूरोप की समृद्धि को समेटे हुए हैं और सेवा के एक सार्वभौमिक बुलाहट से जुड़ी है। एक गुरु एवं एक प्रशिक्षक के रूप में वह अपने धमसंघ में युवतियों को आत्मपरक करने में उनका साथ देती हैं, उन्हें स्पष्टता, अर्थ एवं हिम्मत पाने में मदद करती हैं। वे स्कूल में छोटे बच्चों की भी देखरेख करती हैं, जहां वे क्लास कमरे के बाहर तक उनका ध्यान रखती हैं। वे बड़े धीरज एवं सावधानी से बच्चों और उनके माता पिताओं का साथ देती हैं। सुनने, अपनी उपस्थिति और व्यक्तिगत साक्ष्य के माध्यम से वे मानवीय और ख्रिस्ते दोनों प्रकार के मूल्यों को अपने धमसंघ के कार्यक्रम अनुसार प्रकट करती हैं। हर दिन की शुरुआत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना से करती हैं, जो उनके प्रेरित कार्यों को बल प्रदान करती है। उनका जीवन पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियों और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। वे हमेशा अपने धमसंघ के शिक्षा देने के कार्यक्रम को ध्यान में रखती हैं और उसको प्रेम, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सच्ची पारिवारिक भावना के साथ करने का प्रयास करती हैं। सिस्टर जूली जोर देकर कहती हैं, बच्चों को प्यार एवं सुरक्षा चाहिए, परिवारों को शैक्षणिक मदद की आवश्यकता है और युवाओं को सच्चाई एवं भरोसे के साथ साथ दिए जाने की जरूरत है। अपनी उपस्थिति से सिस्टर जूली शांति और आत्मविश्वास के लिए जगह बनाती हैं, जहां लोग स्वागत किए गए एवं समर्थन दिए गए महसूस कर सकें। सिस्टर जूली का समर्पण छोटे लेकिन गहरे तरीकों से दिखाई देता है। बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में बड़े हो रहे हैं और युवा अपनी बुलाहट यात्रा में हिम्मत पा रहे हैं। वे कहती हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। ये मेरी बुलाहट को मजबूत करती हैं और मुझे याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर दिन की सेवा के माध्यम से चुपचाप लेकिन सामर्थ्य के साथ काम करते हैं। हालांकि उनकी मिशनरी यात्रा चुनौतियों से अछूती नहीं है। सांस्कृतिक पृथकता, जिम्मेदारियों का बोझ और रोज की थकान ने उनके इरादों को परखा है। फिर भी उनका मानना है कि हर मुश्किल ने उन्हें ज्यादा विनम्र, धैर्य रखने वाले और खुले दिल की मिशनरी बनाया है। वे अपने धर्मसंघी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं, जो अपने बीच उनकी उपस्थिति को महत्व देते और सराहना करते हैं। अपने धर्मसंघी जीवन यात्रा पर चिंतन करते हुए सिस्टर जूली पोस्ट करती हैं, विशेषकर बच्चों के बीच खुशी से प्यार एवं सेवा देना है या आत्मदान करना है। छोटे छोटे कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना है, जो आशा जगाते और भविष्य को आकार देते हैं। सिस्टर जूली के समान बहुत सारे धर्मसंघी बहनों ने अफ्रीका से और दुनिया के अन्य हिस्सों से सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को अपनाया है, ताकि ख्रिस्त के सुसमाचार को उन स्थानों तक पहुंचा सकें जहां से कभी मिशनरी उनकी भूमि आए थे। इस तरह अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और निष्ठापूर्ण सेवा के द्वारा वे कलीसिया के जीवन को नवीकृत कर रही हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते आज यीशु हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या हम ख्रिस्त के मूल्यों को अपनाते हुए उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हैं? श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक मिशनरी धर्म बहनों के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीना मासिवो CPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका दोस्ती। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, माना जाता है कि दोस्ती और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्त वो होता है जो सुख और दुख में साथ दे, जिसे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह खून के रिश्ते से भी जरूरी हो जाती है। लड़का और लड़की में भी सबसे पहले दोस्ती होती है, बाद में प्यार हो जाता है। चूंकि हमारे समाज में लड़कियों का लड़कों से बात करना सही माना नहीं जाता है और लड़कियों पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, शायद यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों में लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसे निभाते भी हैं। दोस्ती में सभी लोग अपने दोस्तों की परवाह करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़के और लड़की की दोस्ती को शक के निगाहों से देखते हैं। प्रस्तुत नाटिका दोस्ती और प्यार को लेकर आपके भ्रम को दूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका दोस्ती।

0: ओए वरुण, हाय। सुन, तूने वेकअप सीट देखी?
1: नाइस मूवी।
0: हाँ यार, वेकअप
1: सीट
0: सीट
1: सारे
0: सारे
1: पल
0: पल
1: कहे,
0: कहे,
1: वेकअप
0: वेकअप
1: सीट
0: सीट
1: चल
0: चल
1: कहीं
0: कहीं
1: चले।
0: चले। कैसी बेहुदा लड़की है ये, न शर्म न हया। छी, मैं आज ही अरुण से बात करूंगी। अपने छोरे को संभाल, वरना ये लड़की वरुण को ले उड़ेगी और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। कैसी छिछोरी है, राम राम राम।

0: डिंपल।
1: अरे
0: ओ डिंपल,
1: हाय हाय वरुण हाय।
0: वो तो ठीक है मैडम, मगर आप थी कहाँ इतने दिन?
1: अरे वरुण, वो मेरी मामी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उनके पास चली गई थी। अरे उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, तुम्हें तो पता
0: ओहो,
1: ही है, मामा के जाने के बाद अकेली रहती हैं बेचारी।
0: ओह अच्छा, अभी कहाँ चल दी?
1: अरे वरुण तू भी चला, अपनी वो शिखा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है।
0: क्या वो लड़की भी? आई एम श्योर गलती भी उसी की होगी, मगर बेचारा सामने वाला पिट गया होगा।
1: अरे कोई पिटा नहीं, वो ना खुद ही फिसल गई और ना अपने पैर की हड्डी तुड़वा ली।
0: चल
1: चले
0: चल चल। शिखा जी, आप गाड़ी चलाने का कष्ट क्यों करती हैं? अजी, आप जैसी सुंदर कन्या के लिए ड्राइवरों की कमी है क्या?
1: वरुण, वो बेचारी दर्द में पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो देखो उधर, बेचारे रोहन और मोहित कैसे उदास से खड़े होकर उसके दर्द की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
0: नहीं डिंपल, बात यह है कि एग्जाम सर पर हैं और शिखा की प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट नहीं हुई है।
1: अरे मोहित, उसमें परेशान होने की क्या बात है यार, अपन सब है तो मिलकर पूरा कर देंगे। अच्छा सुनो, अब ये ना बुद्धुओं जैसी शक्लें बनाना बंद करो। वो तो देखो, तुम्हें देख कर ना बेचारी शिखा की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ ऐसे ही टंगे रहे ना, तो बेचारी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। अब चलो चलो यहाँ से।
0: डिंपल, काम था यार,
1: हाँ बोल ना मोहित।
0: वो रूम का किराया देना था। पापा का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो कुछ मदद।
1: अच्छा सुन, तू ना टेंशन मत ले, अपन ना कुछ करते
2: हाय
1: हैं।
2: हाय, ये तो वही लड़की है, डिंपल। किस लड़की के साथ खड़ी है ये? अरे उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। राम राम, मैं तो आज ही वरुण की अच्छी खबर लूंगी। अगर फिर ये लड़की घर आई ना, तो टांगे दौड़ के रख दूंगी वरुण की।
0: हाँ मौसी, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से ये क्यों चिल्ला रही हो? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ।
2: हाँ, बहरा नहीं है मगर अंधा जरूर हो गया है उस छोकरी के प्यार में, तभी तो तुझे उसका असली रूप नजर नहीं आ रहा।
0: हैं, ये क्या बोल रही हो? अरे छोकरी, कौन सी छोकरी, कौन सा प्यार?
2: ऐसा भोला भी मत बन, वही डिंपल। राम राम, ऐसी बेशरम तो मैंने न देखी न सुनी। यूं तो तेरे आगे पीछे घूमती है और तेरे पीठ पीछे। राम राम, मैंने किसी और लड़के के साथ देखा उसको।
0: हे भगवान, मौसी मौसी, डिंपल मेरी दोस्त है पहली बात। दूसरी ये कि वो हमारी क्लास में सभी की दोस्त है, क्योंकि वह बहुत अच्छी है और पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है, समझी तुम?
2: अरे कैसा लड़का है, मुझे समझाने चला है? तू तो जब देख डिंपल डिंपल करता है, वो क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तेरी उम्र में
0: हाँ, आपकी उम्र की बात दूसरी थी मौसी, मगर अब वो जमाना नहीं रहा। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। लड़के और लड़की में बस एक ही रिश्ता नहीं होता मौसी।
2: तेरी अकल पर तो उसका जादू चल गया है। पता है, आज मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के के साथ देखा। राम राम, कैसी बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख के बात कर रही थी वो।
0: मौसी, बात कुछ और भी तो हो सकती है ना। हो सकता है वो लड़का किसी मुसीबत में हो और डिंपल से मदद
2: तुझे
0: मांग।
2: तो कुछ भी कहना फिजूल है। देख वरुण, तू उस लड़की से मेलजोल बंद कर, वरना।
0: तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं।
2: अरे वरुण सुन,

0: बचाओ।
1: अरे अरे अरे अरे अरे मोहित, अरे गाड़ी तो रुक, देख तो, देख तो, एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे अरे अरे अरे मोहित,
0: हे
1: अरे ये तो
0: भगवान,
1: वरुण की मौसी है।
0: हे भगवान
1: उठा उठा उठा
0: बचा।
1: उठा।
2: हाँ अभी उठाता हूँ।
1: हेलो हेलो,
0: हाय
1: एम्बुलेंस
0: राम।
1: जल्दी आइए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है।
0: अरे मर गई।
1: मौसी मौसी घबराओ नहीं, अभी सब
0: हाय
1: ठीक हो
0: राम।
1: जाएगा। मोहित अरे कहाँ है, सुन क्लास के लड़कों को
0: अरे
1: फोन तो कर, शायद ब्लड की जरूरत पड़ेगी।

0: कैसी हो मौसी?
1: ठीक हूँ बेटा।
0: देखा मौसी, अगर उस दिन डिंपल समय पर ना आती तो आप तो गई थी। उसने क्लास के लड़कों को तभी फोन करके हॉस्पिटल आने को कह दिया था, इसलिए तुम्हें समय पर खून भी मिल गया। जरा सोचो, अगर उसकी सबसे दोस्ती ना हुई होती तो कोई क्यों आता? सारी रात बैठी रही है तुम्हारे पास सब। कौन लगती हो तुम उसकी, बताओ।
1: हाँ वरुण, मैं भी 3 दिनों से उसे यहाँ पड़ी पड़ी देख रही थी। सभी से बड़ी समझदारी और अपनेपन से बात करती है। तेरे वो दोस्त मोहित और रोहित, वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दोस्ती तो बेमिसाल है बेटा।
0: तो अब आप समझी दोस्ती के मायने, लड़का और लड़की दोस्त भी होते हैं मौसी।
1: हाँ बेटा, समझ गई। ये नया जमाना है, हम लोगों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
2: क्या समझा रहे हो वरुण?
0: कुछ नहीं डिंपल, मौसी को गाने का मतलब समझा
2: ओह अच्छा, वेकअप
0: रहा हूं।
2: सेड।

दोस्ती, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता, समता बोरेकर और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार का कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज की मिशनरी धर्म बहनों पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के इस आदेश का पालन कलीसिया के आरंभ से ही किया जा रहा है, सबसे पहले प्रेरितों के द्वारा, फिर यूरोपीय देशों के मिशनरियों के द्वारा, और आज भी यह कार्य जारी है। सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो याद करती हैं, एक समय था जब यूरोप के मिशनरियों ने सुसमाचार की ज्योति जलाने के लिए समुद्र पार किया। उनकी उपस्थिति ने समुदायों और संस्कृतियों को नया रूप दिया। आज इतिहास ने एक नरम लेकिन प्रभावशाली पन्ना पलट दिया है। जैसे जैसे पश्चिम के कुछ हिस्सों में बुलाहट कम हो रही है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मौजूद देशों से कलीसिया उन जगहों पर फिर से सुसमाचार पहुंचाने के लिए मिशनरियों को भेज रही है जहां से कभी उन्हें सुसमाचार भेजा गया था। धर्म बहनें उन जगहों पर चुपचाप कलीसिया को नवीकृत कर रही हैं जहां से विश्वास उनके तटों पर सबसे पहले पहुंचा था। यह मिशन का पूरा चक्र है। यह एक जीता जागता संकेत है कि कलीसिया एक शरीर के रूप में आत्मा द्वारा लगातार नवीकृत होती रहती है। सिस्टर जूली इयाया सीएसएफ बेरगमो के पौत्र परिवार धमसंघ के सदस्य हैं, जो शिक्षा एवं निष्ठापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से कलीसिया को बनाए रखने वाली कई धम बहनों में से एक हैं। कोंगो में जन्मे सिस्टर जूली की यात्रा एक साधारण लेकिन मजबूत हाथ से शुरू हुई। 2012 में उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और धम संघी जीवन अपनाते हुए ईश्वर के बुलावे के प्रत्युत्तर में अनजान जगह की यात्रा पर निकले। उसके बाद जो कुछ हुआ वह प्रशिक्षण की अवधि

है और सेवा के एक स्वाभाविक बुलाहट से जुड़ी है। एक गुरु एवं एक प्रशिक्षक के रूप में वह अपने धम्म संघ में युवतियों को आत्मपरक करने में उनका साथ देती हैं, उन्हें स्पष्टता, अर्थ एवं हिम्मत पाने में मदद करती हैं। वे स्कूल में छोटे बच्चों की भी देखरेख करती हैं, जहां वे क्लास कमरे के बाहर तक उनका ध्यान रखती हैं। वे बड़े धीरज एवं सावधानी से बच्चों और उनके माता पिताओं का साथ देती हैं। सुनने, अपनी उपस्थिति और व्यक्तिगत साक्ष्य के माध्यम से वे मानवीय और ख्रिस्ते दोनों प्रकार के मूल्यों को अपने धम्म संघ के कार्यक्रम अनुसार प्रकट करती हैं। हर दिन की शुरुआत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना से करती हैं, जो उनके प्रेरित कार्यों को बल प्रदान करती है। उनका जीवन पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियों और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। वे हमेशा अपने धम्म संघ के शिक्षा देने के कार्यक्रम को ध्यान में रखती हैं और उसको प्रेम, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सच्ची पारिवारिक भावना के साथ करने का प्रयास करती हैं। सिस्टर जूली जोर देकर कहती हैं, बच्चों को प्यार एवं सुरक्षा चाहिए, परिवारों को शैक्षणिक मदद की आवश्यकता है और युवाओं को सच्चाई एवं भरोसे के साथ साथ दिए जाने की जरूरत है। अपनी उपस्थिति से सिस्टर जूली शांति और आत्मविश्वास के लिए जगह बनाती हैं, जहां लोग स्वागत किए गए एवं समर्थन दिए गए महसूस कर सकें। सिस्टर जूली का समर्पण छोटे लेकिन गहरे तरीकों से दिखाई देता है। बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में बड़े हो रहे हैं और युवा अपनी बुलाहट यात्रा में हिम्मत पा रहे हैं। वे कहती हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। ये मेरी बुलाहट को मजबूत करती हैं और मुझे याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर दिन की सेवा के माध्यम से चुपचाप लेकिन सामर्थ्य के साथ काम करते हैं। हालांकि उनकी मिशनरी यात्रा चुनौतियों से अछूती नहीं है। सांस्कृतिक पृथकता, जिम्मेदारियों का बोझ और रोज की थकान ने उनके इरादों को परखा है। फिर भी उनका मानना है कि हर मुश्किल ने उन्हें ज्यादा विनम्र, धैर्य रखने वाली और खुले दिल की मिशनरी बनाया है। वे अपने धम्म संघ के समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं, जो अपने बीच उनकी उपस्थिति को महत्व देते और सराहना करते हैं। अपने धम्म संघ के जीवन यात्रा पर चिंतन करते हुए सिस्टर जूली पोस्ट करती हैं, विशेषकर बच्चों के बीच खुशी से प्यार एवं सेवा देना है या आत्मदान करना है, छोटे छोटे कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना है जो आशा जगाते और भविष्य को आकार देते हैं। सिस्टर जूली के समान बहुत सारे धम्म संघी बहनों ने अफ्रीका से और दुनिया के अन्य हिस्सों से सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को अपनाया है, ताकि ख्रिस्त के सुसमाचार को उन स्थानों तक पहुंचा सकें जहां से कभी मिशनरी उनकी भूमि आए थे। इस तरह अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और निष्ठापूर्ण सेवा के द्वारा वे कलीसिया के जीवन को नवीकृत कर रही हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते आज यीशु हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या हम ख्रिस्त के मूल्यों को अपनाते हुए उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हैं? श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक मिशनरी धर्म बहनों के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीना मासिवो CPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका दोस्ती। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, माना जाता है कि दोस्ती और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्त वो होता है जो सुख और दुख में साथ दे, जिसे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह खून के रिश्ते से भी जरूरी हो जाती है। लड़का और लड़की में भी सबसे पहले दोस्ती होती है, बाद में प्यार हो जाता है। चूंकि हमारे समाज में लड़कियों का लड़कों से बात करना सही माना नहीं जाता है और लड़कियों पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, शायद यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों में लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसे निभाते भी हैं। दोस्ती में सभी लोग अपने दोस्तों की परवाह करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़के और लड़की की दोस्ती को शक के निगाहों से देखते हैं। प्रस्तुत नाटिका दोस्ती और प्यार को लेकर आपके भ्रम को दूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका दोस्ती।

0: ओए वरुण, हाय। सुन, तूने वेकअप सीट देखी?
1: नाइस मूवी।
0: हाँ यार, वेकअप
1: फिर
0: सीट
1: सारे
0: सारे
1: पल
0: पल
1: कहें,
0: कहे,
1: वेकअप
0: वेकअप
1: सीट
0: सीट
1: चल
0: चल कहीं
1: कहीं
0: चले।
1: चलें।
0: कैसी बेहुदा लड़की है ये, न शर्म न हया। छी, मैं आज ही अरुण से बात करूंगी। अपने छोरे को संभाल, वरना ये लड़की वरुण को ले उड़ेगी और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। कैसी छिछोरी है। राम राम राम।

0: डिंपल।
1: अरे
0: ओ डिंपल,
1: हाय हाय वरुण हाय।
0: वो तो ठीक है मैडम, मगर आप थी कहाँ इतने दिन?
1: अरे वरुण, वो मेरी मामी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उनके पास चली गई थी। अरे उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, तुम्हें तो पता
0: ओहो,
1: ही है, मामा के जाने के बाद अकेली रहती हैं बेचारी।
0: ओह अच्छा, अभी कहाँ चल दी?
1: अरे वरुण तू भी चला, अपनी वो शिखा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है।
0: क्या वो लड़की भी? आई एम श्योर गलती भी उसी की होगी, मगर बेचारा सामने वाला पिट गया होगा।
1: अरे कोई पिटा नहीं, वो ना खुद ही फिसल गई और ना अपने पैर की हड्डी तुड़वा ली।
0: चल
1: चलें।
0: चल चल। शिखा जी, आप गाड़ी चलाने का कष्ट क्यों करती हैं? अजी, आप जैसी सुंदर कन्या के लिए ड्राइवरों की कमी है क्या?
1: वरुण वो बेचारी दर्द में पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो देखो उधर बेचारे रोहन और मोहित कैसे उदास से खड़े होकर उसके दर्द की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
0: नहीं डिंपल, बात यह है कि एग्जाम सर पर हैं और शिखा की प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट नहीं हुई है।
1: अरे मोहित, उसमें परेशान होने की क्या बात है यार, अपन सब है तो मिलकर पूरा कर देंगे। अच्छा सुनो, अब ये ना बुद्धुओं जैसी शक्लें बनाना बंद करो। वो तो देखो तुम्हें देखकर ना बेचारी शिखा की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ ऐसे ही टंगे रहे ना तो बेचारी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। अब चलो चलो यहाँ से।
0: डिंपल, काम था यार,
1: हाँ बोल ना मोहित।
0: वो रूम का किराया देना था। पापा का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो कुछ मदद।
1: अच्छा सुन, तू ना टेंशन मत ले, अपन ना कुछ करते
2: हाय
1: हैं।
2: हाय, ये तो वही लड़की है, डिंपल। किस लड़की के साथ खड़ी है ये? अरे उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। राम राम, मैं तो आज ही वरुण की अच्छी खबर लूंगी। अगर फिर ये लड़की घर आई ना तो टांगे दौड़ के रख दूंगी वरुण की।
0: हाँ मौसी, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से ये क्यों चिल्ला रही हो? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ।
2: हाँ, बहरा नहीं है मगर अंधा जरूर हो गया है उस छोकरी के प्यार में, तभी तो तुझे उसका असली रूप नजर नहीं आ रहा।
0: हैं, ये क्या बोल रही हो? अरे छोकरी, कौन सी छोकरी, कौन सा प्यार?
2: ऐसा भोला भी मत बन, वही डिंपल। राम राम, ऐसी बेशरम तो मैंने न देखी न सुनी। यूं तो तेरे आगे पीछे घूमती है और तेरे पीठ पीछे। राम राम, मैंने किसी और लड़के के साथ देखा उसको।
0: हे भगवान, मौसी मौसी, डिंपल मेरी दोस्त है पहली बात, दूसरी ये कि वो हमारी क्लास में सभी की दोस्त है, क्योंकि वह बहुत अच्छी है और पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है, समझी तुम?
2: अरे कैसा लड़का है, मुझे समझाने चला है? तू तो जब देख डिंपल डिंपल करता है वो, क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तेरी उम्र में
0: हाँ हाँ आपकी उम्र की बात दूसरी थी मौसी, मगर अब वो जमाना नहीं रहा। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, लड़के और लड़की में बस एक ही रिश्ता नहीं होता मौसी।
2: तेरी अकल पर तो उसका जादू चल गया है। पता है आज मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के के साथ देखा। राम राम, कैसी बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख के बात कर रही थी वो।
0: मौसी, बात कुछ और भी तो हो सकती है ना, हो सकता है वो लड़का किसी मुसीबत में हो और डिंपल से मदद
2: तुझे
0: मांग।
2: तो कुछ भी कहना फिजूल है। देख वरुण, तू उस लड़की से मेलजोल बंद कर, वरना।
0: तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं।
2: अरे वरुण सुन।

0: गई, बचाओ। अरे
1: अरे अरे अरे अरे अरे मोहित, अरे गाड़ी तो रोक, देख तो देख, तो एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे अरे अरे अरे मोहित,
0: हे
1: अरे ये तो
0: भगवान,
1: वरुण
0: हे
1: की मौसी है।
0: भगवान,
1: उठा उठा उठा
0: बचा।
1: उठा।
2: हाँ अभी उठाता हूँ।
1: हेलो हेलो,
0: हाय
1: एम्बुलेंस
0: राम।
1: जल्दी आइए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है।
0: अरे मर गई,
1: मौसी मौसी घबराओ नहीं, अभी सब
0: हाय
1: ठीक हो
0: राम।
1: जाएगा। मोहित अरे कहाँ है, सुन क्लास के लड़कों को
0: अरे
1: फोन तो कर, शायद ब्लड की जरूरत पड़ेगी।

0: कैसी हो मौसी?
1: ठीक हूँ बेटा।
0: देखा मौसी, अगर उस दिन डिंपल समय पर ना आती तो आप तो गई थी। उसने क्लास के लड़कों को तभी फोन करके हॉस्पिटल आने को कह दिया था, इसलिए तुम्हें समय पर खून भी मिल गया। जरा सोचो, अगर उसकी सबसे दोस्ती ना हुई होती तो कोई क्यों आता? सारी रात बैठी रही है तुम्हारे पास सब। कौन लगती हो तुम उसकी, बताओ।
1: हाँ वरुण, मैं भी 3 दिनों से उसे यहाँ पड़ी पड़ी देख रही थी। सभी से बड़ी समझदारी और अपनेपन से बात करती है। तेरे वो दोस्त मोहित और रोहित, वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दोस्ती तो बेमिसाल है बेटा।
0: तो अब आप समझी दोस्ती के मायने, लड़का और लड़की दोस्त भी होते हैं मौसी।
1: हाँ बेटा, समझ गई। ये नया जमाना है, हम लोगों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
2: क्या समझा रहे हो वरुण?
0: कुछ नहीं डिंपल, मौसी को गाने का मतलब समझा रहा
2: ओह अच्छा, मेकअप
0: हूं।
2: सेड।

दोस्ती। अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता, समता बोरेकर और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं।
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह में।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना में पोप लियो 14वें ने दूसरों को क्षमा करने की शक्ति पर चिंतन किया। ख्रिस्त ने हमें माफ किया है ताकि हम भी नफरत, विभाजन और हिंसा का सामना कर सकें और शांति एवं प्यार को बढ़ावा दे सकें। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें क्षमाशीलता के बारे बताता है, जो ख्रिस्तीय जीवन की एक बुनियादी विशेषता है। यीशु ने क्रूस पर भी क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया और इसका उदाहरण दिया, जहां उन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए पिता से प्रार्थना की,
1: Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, आज के पाठ में पेत्रुस यीशु से यही सवाल पूछते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। पोप ने कहा कि उनके शब्द एक उदार हृदय को दिखाते हैं, क्योंकि बाइबल में 7 संख्या पूर्णता की निशानी है और 7 बार माफ करने का मतलब है बहुत अधिक माफ करना। हालांकि यीशु का जवाब और भी आगे जाता है,
1: Non ti dico fino a 7 volte, afferma.
0: मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार कहता हूँ। दूसरे शब्दों में सभी सीमाओं से परे हमेशा माफ करना। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे एक नौकर का दृष्टांत बताते हैं, जिस पर उसके मालिक का एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। हालांकि मालिक उसका कर्ज दया करके पूरी तरह माफ कर देता है, लेकिन दूसरी ओर यह नौकर अपने साथी सेवकों में से किसी पर भी वैसी दया नहीं दिखाता, जिसके कारण उसे फटकारा जाता और कड़ी सजा मिलती है। संत पापा ने कहा, इन शब्दों के साथ यीशु हमें याद दिलाते हैं कि उफार और क्षमाशीलता हमारे अस्तित्व की नींव हैं।
1: Tutto ci è dato da Dio per puro amore.
0: सभी चीजें हमें ईश्वर द्वारा विशुद्ध प्रेम से दी गई हैं और हम में से कोई भी इस भलाई का जवाब देने में पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। इस कारण से निस्वार्थ होना, जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है, हमारे जीवन के लिए भी सबसे अच्छा नियम है। हम इसे हर दिन अनुभव करते हैं। क्षमा अपरिहार्य है और इसके बिना हम शांति से नहीं रह सकते। देर सवेर संघर्ष, आरोप, दुर्भावना और प्रतिशोध के कार्य हमारे दिलों में और लोगों के बीच उभरते हैं और ये कार्य रिश्तों को नष्ट कर देते हैं, परिवारों को विभाजित करते और युद्ध उत्पन्न करते हैं। केवल क्षमा ही हमें स्वतंत्र करती और प्रकाश को पुनर्स्थापित करती है। जहां मानव की भौतिक और नैतिक गरीबी ने क्षितिज को अंधकारमय कर दिया है एवं मार को अनिश्चित बना दिया है, संत पापा ने कहा,
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte.
0: क्षमा ही एक शीतल हवा की तरह सबसे घने बादलों को भी तब तक बहा ले जाती है जब तक कि सूर्य एक बार फिर चमक ना जाए। संत पेत्रुस ने स्वयं अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया, खासकर जब दुख भोग के दौरान यीशु को त्यागने और छोड़ने के बाद वे झील के किनारे जी उठे प्रभु से मिले और उन्होंने खुद को सिर्फ एक सवाल पूछते सुना,
1: Simone, mi ami, unita a un invito, seguimi.
0: सिमोन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसके साथ एक निमंत्रण भी था, मेरे पीछे चले आओ, जो वही निमंत्रण था जिसको उनकी पहली मुलाकात में दिया गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। यही प्यार जो माफ करता और चंगा करता है, प्रथम प्रेरितों के लिए उनके मिशन की पुष्टि का निशान होगा। इसके बाद संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, इसलिए आइए हम दया की माता कुंवारी मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें माफ करने में मदद करें, हमेशा माफ करने, तब भी जब पहला कदम उठाना मुश्किल हो और हिम्मत एवं लगन के साथ प्यार की शांत एवं चंगा करने वाली रोशनी फैलाएं, जो नफरत पर जीत हासिल करती है और सभी प्रकार के गुस्से को खत्म कर देती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने 25 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले को याद किया और इससे प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, दो दिन पहले अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की 25वीं सालगिरह थी। मैं उन लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं दोहराता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो उस दुखद दिन के जख्म को सह रहे हैं। ऐसे समय में जब लड़ाई और हिंसा हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को परेशान कर रही है, मैं सभी को यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित

0: मैं आप सभी रोमवासी एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti voi auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सोमवार 14 सितंबर को संत पापा लियो 14 में अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल पहले आज ही के दिन वे संत अगुस्टीन धर्म समाज के प्रायर जनरल के तौर पर चुने गए थे। जन्मदिन पर दुनिया भर से वाटिकन में बधाई संदेश और शुभकामनाएं आ रही हैं। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इटली के स्थानीय कलीसिया की ओर से बधाई संदेश भेजा और संत पापा की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया। इटालियन धर्माध्यक्षों ने याद दिलाया कि संत पापा लियो ने कलीसिया के जीवन में सुसमाचार को सबसे जरूरी प्राथमिकता और विश्वास को यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर जोर दिया था। संत पापा परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद बिना हथियारों वाली और हथियार छोड़ने पर मजबूर करने वाली शांति की बात करने के बाद से अपनी प्रेरितिक यात्राओं, मुलाकातों और सार्वजनिक भाषणों में बार बार शांति और मेल मिलाप पर जोर दिया है। अपने कार्यकाल के पहले साल में संत पापा ने 400 से ज्यादा बार शांति और मेल मिलाप का जिक्र किया। साथ ही एकता, बातचीत, उम्मीद और मानव गरिमा के बारे में भी अक्सर बातें की। उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा तुर्की और लेबनान थी। निचेया में पहली ख्रीस्तीय एकता वर्धक सभा की 1700वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने ख्रिस्तियों की एकता पर जोर दिया, जबकि लेबनान में उन्होंने बातचीत और शांति पर ध्यान दिया। 6 जनवरी 2026 को उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को बंद करके संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए जुबली वर्ष 2025 का समापन किया। उन्होंने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को मानव गरिमा, आज़ादी, जिम्मेदारी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने डिलेक्सी ते को भी

पूरा किया जो गरीबों के प्रति प्रेम पर संत पापा फ्रांसिस का शुरू किया गया एक प्रेरितिक संदेश था। उन्होंने जुलाई में लंपेदूसा की अपनी यात्रा और प्रवासियों से मुलाकात के दौरान इस विषय पर भी बात की थी। 14 सितंबर 1955 को शिकागो में जन्मे संत पापा लियो 14 में अपने 72वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें उनके कार्यकाल के काम के मुख्य विषय साफ तौर पर तय है, शांति, एकता और मानव गरिमा की रक्षा। उधर एड टू द चर्च इन नीड, जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था ने रोम में एक सभा आयोजित की और ऑस्ट्रिया के मोनसिन्योर फेडरिक बेचीना को परम धर्मपीठीय संस्था का नया समन्वयक चुना। लगभग 80 साल पहले शुरू हुई संस्था एड टू द चर्च इन नीड ACN यानी जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था 140 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। यह संस्था 1300 से ज्यादा धर्म प्रांतों के साथ मिलकर काम करती है और हर साल 5000 से ज्यादा परियोजनाओं में मदद करती है। इसके 24 देशों में राष्ट्रीय विभाग भी हैं जो संस्था के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अपने चुनाव के बाद वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए मोनसिन्योर बेचीना ने संत पापा लियो 14वें के ACN के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया। जब वे पेरू में धर्माध्यक्ष थे तब वे हमारे परियोजना पार्टनर थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम किया। वे चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें, खासकर धर्म प्रचार के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंद स्थानीय कलीसिया और विश्वासियों की मदद करते हैं। हमारे मिशन का एक हिस्सा उन लोगों और कलीसियाओं की कहानी बताना भी है जिन्हें उनके विश्वास के कारण सताया जाता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सताई गई कलीसिया के पास अपनी अनूठी खूबियां और संपत्तियां हैं जिन्हें वे हमारे साथ साझा करते हैं। उनमें उम्मीद है। यह संस्था अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया और दूसरे देशों में भी स्थानीय कलीसियाओं की मदद करती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध और ऐसे दूसरे संकटों से प्रभावित हैं जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। उधर सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल प्रचार के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने हेतु 100 से अधिक संचारकों और सामग्री निर्माताओं को एक साथ लाने वाली पहली एशियाई कैथोलिक डिजिटल मिशनरी सभा मनीला में संपन्न हुई। यह सभा 10 से 13 सितंबर को फिलीपींस के क्विजोन सिटी में रेडियो वेरितास एशिया कैंपस में आयोजित की गई थी। प्रभावक से गवाह तक एशिया के डिजिटल मिशन के लिए सिनोडल मार्ग थीम के तहत आयोजित सभा को प्रेरितों के इन शब्दों से प्रेरणा मिली। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में बात किए बिना हम नहीं रह सकते। इस सभा ने प्रतिभागियों को सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर आपसी जुड़ाव और आस्था के मिशनरी पहलू से जुड़े गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने पूरे महाद्वीप में डिजिटल तरीके से क्रिश्चिय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयारी और एक साझा सोच को भी बढ़ावा दिया। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश भेजा, जिसमें प्रतिभागियों को अपने डिजिटल सामग्री में यीशु मसीह के सच्चे गवाह के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और लीपा के महाधर्माध्यक्ष गिलबर्ट गारसेरा ने उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। प्रवचन में उन्होंने कहा, हम यीशु की एशिया में जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बल्कि एशिया के करीब आकर वहां के लोगों की बात सुनकर अपने लोगों के साथ चलकर उनकी सेवा करके और प्यार से यीशु के प्रेम को सुनाकर और महसूस करा कर लाते हैं। FABC के सामाजिक संचार कार्यालय के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मार्सेलिनो ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कलीसिया को यह समझना होगा कि लोग पहले से ही डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने 5 जरूरी बदलावों के बारे में बताया, कंटेंट से मुलाकात तक, दर्शकों से समुदाय तक, वायरल होने से वफादारी तक, प्रतियोगिता से सहयोग तक और प्रभाव से गवाही तक।
उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक स्टार्टर शुरुआती चीज है और यूखरिस्त मंजिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: में पोप लियो 14वें ने दूसरों को क्षमा करने की शक्ति पर चिंतन किया। ख्रिस्त ने हमें माफ किया है ताकि हम भी नफरत, विभाजन और हिंसा का सामना कर सकें और शांति एवं प्यार को बढ़ावा दे सकें। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 14 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono.
0: आज का सुसमाचार पाठ हमें क्षमाशीलता के बारे बताता है, जो ख्रिस्तीय जीवन की एक बुनियादी विशेषता है। यीशु ने क्रूस पर भी क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया और इसका उदाहरण दिया, जहां उन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए पिता से प्रार्थना की,
1: Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, आज के पाठ में पेत्रुस यीशु से यही सवाल पूछते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। पोप ने कहा कि उनके शब्द एक उदार हृदय को दिखाते हैं, क्योंकि बाइबल में 7 संख्या पूर्णता की निशानी है और 7 बार माफ करने का मतलब है बहुत अधिक माफ करना। हालांकि यीशु का जवाब और भी आगे जाता है,
1: Non ti dico fino a 7 volte, afferma.
0: मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार कहता हूँ। दूसरे शब्दों में सभी सीमाओं से परे हमेशा माफ करना। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे एक नौकर का दृष्टांत बताते हैं, जिस पर उसके मालिक का एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। हालांकि मालिक उसका कर्ज दया करके पूरी तरह माफ कर देता है, लेकिन दूसरी ओर यह नौकर अपने साथी सेवकों में से किसी पर भी वैसी दया नहीं दिखाता, जिसके कारण उसे फटकारा जाता और कड़ी सजा मिलती है। संत पापा ने कहा, इन शब्दों के साथ यीशु हमें याद दिलाते हैं कि उफार और क्षमाशीलता हमारे अस्तित्व की नींव हैं।
1: Tutto ci è dato da Dio per puro amore.
0: सभी चीजें हमें ईश्वर द्वारा विशुद्ध प्रेम से दी गई हैं और हम में से कोई भी इस भलाई का जवाब देने में पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। इस कारण से निस्वार्थ होना, जो हमारे अस्तित्व का स्रोत है, हमारे जीवन के लिए भी सबसे अच्छा नियम है। हम इसे हर दिन अनुभव करते हैं। क्षमा अपरिहार्य है और इसके बिना हम शांति से नहीं रह सकते। देर सवेर संघर्ष, आरोप, दुर्भावना और प्रतिशोध के कार्य हमारे दिलों में और लोगों के बीच उभरते हैं और ये कार्य रिश्तों को नष्ट कर देते हैं, परिवारों को विभाजित करते और युद्ध उत्पन्न करते हैं। केवल क्षमा ही हमें स्वतंत्र करती और प्रकाश को पुनर्स्थापित करती है। जहां मानव की भौतिक और नैतिक गरीबी ने क्षितिज को अंधकारमय कर दिया है एवं मार को अनिश्चित बना दिया है, संत पापा ने कहा,
1: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte.
0: क्षमा ही एक शीतल हवा की तरह सबसे घने बादलों को भी तब तक बहा ले जाती है जब तक कि सूर्य एक बार फिर चमक ना जाए। संत पेत्रुस ने स्वयं अपने जीवन में कई बार इसका अनुभव किया, खासकर जब दुख भोग के दौरान यीशु को त्यागने और छोड़ने के बाद वे झील के किनारे जी उठे प्रभु से मिले और उन्होंने खुद को सिर्फ एक सवाल पूछते सुना,
1: Simone, mi ami, unita a un invito, seguimi.
0: सिमोन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसके साथ एक निमंत्रण भी था, मेरे पीछे चले आओ, जो वही निमंत्रण था जिसको उनकी पहली मुलाकात में दिया गया था। ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। यही प्यार जो माफ करता और चंगा करता है, प्रथम प्रेरितों के लिए उनके मिशन की पुष्टि का निशान होगा। इसके बाद संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, इसलिए आइए हम दया की माता कुंवारी मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें माफ करने में मदद करें। हमेशा माफ करने, तब भी जब पहला कदम उठाना मुश्किल हो, और हिम्मत एवं लगन के साथ प्यार की शांत एवं चंगा करने वाली रोशनी फैलाएं जो नफरत पर जीत हासिल करती है और सभी प्रकार के गुस्से को खत्म कर देती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: via mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने 25 साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले को याद किया और इससे प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा,
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, दो दिन पहले अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों की 25वीं सालगिरह थी। मैं उन लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाएं दोहराता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो उस दुखद दिन के जख्म को सह रहे हैं। ऐसे समय में जब लड़ाई और हिंसा हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को परेशान कर रही है, मैं सभी को यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि प्रभु दुनिया को अपनी शांति का वरदान दें। पोप ने सभी विश्वासियों से शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
0: 25 साल पहले हुई दुखद घटना की याद हमें शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने के लिए प्रेरित करती है, सबसे पहले और सबसे बढ़कर प्रार्थना के द्वारा, जिसको हम कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट करते हैं। तत्पश्चात संत पापा ने सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: ed ora saluto con affetto tutti voi, Romani e Pellegrini.
0: मैं आप सभी रोमवासी एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन करता हूँ। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti voi, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सोमवार 14 सितंबर को संत पापा लियो 14 में अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। 25 साल पहले आज ही के दिन वे संत अगुस्टीन धर्म समाज के प्रायर जनरल के तौर पर चुने गए थे। जन्मदिन पर दुनिया भर से वाटिकन में बधाई संदेश और शुभकामनाएं आ रही हैं। इटालियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इटली के स्थानीय कलीसिया की ओर से बधाई संदेश भेजा और संत पापा की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया। इटालियन धर्माध्यक्षों ने याद दिलाया कि संत पापा लियो ने कलीसिया के जीवन में सुसमाचार को सबसे जरूरी प्राथमिकता और विश्वास को यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर जोर दिया था। संत पापा परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद बिना हथियारों वाली और हथियार छोड़ने पर मजबूर करने वाली शांति की बात करने के बाद से अपनी प्रेरितिक यात्राओं, मुलाकातों और सार्वजनिक भाषणों में बार बार शांति और मेल मिलाप पर जोर दिया है। अपने कार्यकाल के पहले साल में संत पापा ने 400 से ज्यादा बार शांति और मेल मिलाप का जिक्र किया। साथ ही एकता, बातचीत, उम्मीद और मानव गरिमा के बारे में भी अक्सर बातें की। उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा तुर्की और लेबनान थी। निचेया में पहली ख्रीस्तीय एकता वर्धक सभा की 1700वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने ख्रिस्तियों की एकता पर जोर दिया, जबकि लेबनान में उन्होंने बातचीत और शांति पर ध्यान दिया। 6 जनवरी 2026 को उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को बंद करके संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए जुबली वर्ष 2025 का समापन किया। उन्होंने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को मानव गरिमा, आज़ादी, जिम्मेदारी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने डिलेक्सी ते को भी पूरा किया, जो गरीबों के प्रति प्रेम पर संत पापा फ्रांसिस का शुरू किया गया एक प्रेरितिक संदेश था। उन्होंने जुलाई में लंपेदूसा की अपनी यात्रा और प्रवासियों से मुलाकात के दौरान इस विषय पर भी बात की थी। 14 सितंबर 1955 को शिकागो में जन्मे संत पापा लियो 14वें अपने 72वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें उनके कार्यकाल के काम के मुख्य विषय साफ तौर पर तय है, शांति, एकता और मानव गरिमा की रक्षा। उधर एड टू द चर्च इन नीड, जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था ने रोम में एक सभा आयोजित की और ऑस्ट्रिया के मोनसिनियोर फेडरिक बेचीना को परम धर्म पीठ संस्था का नया समन्वयक चुना। लगभग 80 साल पहले शुरू हुई संस्था एड टू द चर्च इन नीड ACN यानी जरूरतमंद कलीसिया की मदद संस्था 140 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। यह संस्था 1300 से ज्यादा धर्म प्रांतों के साथ मिलकर काम करती है और हर साल 5000 से ज्यादा परियोजनाओं में मदद करती है। इसके 24 देशों में राष्ट्रीय विभाग भी हैं, जो संस्था के आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अपने चुनाव के बाद वाटिकन न्यूज से बातें करते हुए मोनसिनियोर बेचीना ने संत पापा लियो 14वें के ACN के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया। जब वे पेरू में धर्माध्यक्ष थे, तब वे हमारे परियोजना पार्टनर थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम किया। वे चाहते हैं कि हम जिम्मेदारी लें, खासकर धर्म प्रचार के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम जरूरतमंद स्थानीय कलीसिया और विश्वासियों की मदद करते हैं। हमारे मिशन का एक हिस्सा उन लोगों और कलीसियाओं की कहानी बताना भी है, जिन्हें उनके विश्वास के कारण सताया जाता है। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सताई गई कलीसिया के पास अपनी अनूठी खूबियां और संपत्तियां हैं, जिन्हें वे हमारे साथ साझा करते हैं। उनमें उम्मीद है। यह संस्था अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया और दूसरे देशों में भी स्थानीय कलीसियाओं की मदद करती हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध और ऐसे दूसरे संकटों से प्रभावित हैं, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत होती है। उधर सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल प्रचार के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने हेतु
100 से अधिक संचारकों और सामग्री निर्माताओं को एक साथ लाने वाली पहली एशियाई कैथोलिक डिजिटल मिशनरी सभा मनीला में संपन्न हुई। यह सभा 10 से 13 सितंबर को फिलीपींस के क्विजोन सिटी में रेडियो वेरितास एशिया कैंपस में आयोजित की गई थी। प्रभावक से गवाह तक एशिया के डिजिटल मिशन के लिए सिनोडल मार्ग थीम के तहत आयोजित सभा को प्रेरितों के इन शब्दों से प्रेरणा मिली। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में बात किए बिना हम नहीं रह सकते। इस सभा ने प्रतिभागियों को सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर आपसी जुड़ाव और आस्था के मिशनरी पहलू से जुड़े गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने पूरे महाद्वीप में डिजिटल तरीके से क्रिस्तीय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तैयारी और एक साझा सोच को भी बढ़ावा दिया। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश भेजा, जिसमें प्रतिभागियों को अपने डिजिटल सामग्री में यीशु मसीह के सच्चे गवाह के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष और लीपा के महाधर्माध्यक्ष गिलबर्ट गारसेरा ने उद्घाटन मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। प्रवचन में उन्होंने कहा, हम यीशु की एशिया में जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बल्कि एशिया के करीब आकर वहां के लोगों की बात सुनकर अपने लोगों के साथ चलकर उनकी सेवा करके और प्यार से यीशु के प्रेम को सुनाकर और महसूस करा कर लाते हैं। FABC के सामाजिक संचार कार्यालय के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मार्सेलिनो ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि कलीसिया को यह समझना होगा कि लोग पहले से ही डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने 5 जरूरी बदलावों के बारे में बताया, कंटेंट से मुलाकात तक, दर्शकों से समुदाय तक, वायरल होने से वफादारी तक, प्रतियोगिता से सहयोग तक और प्रभाव से गवाही तक। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया एक स्टार्टर शुरुआती चीज है और यूखरिस्त मंजिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।